जिन्हों गुरु कलगी दर पातशाह ने वो बख्शिश कीती के आ जिथे भाई करैया तू पानी पिलाउना आ मलम भी फटा दे ला दिया आ सिख दा प्यार है आ सिख दी भावना है जिसनू बगाने भी अपने लगते हैं।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ये पूर्ण सिख दी निशानी, ये पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

भाई मंद जी राह भुल गए, जिस राह तो गए सन वो राह भुल गए। तुरिया आउंदिया एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदिया गाउंदिया बरसात जोर दी। पर जदो भाई मंझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नूं संभालिया, लकड़ां नूं बोचिया, लकड़ा कितें डिग ना पए। पर एकदम खूह विच डिगे। पर इधर साहब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन दा आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नूं कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पी। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नूं नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले। अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता, सिर ते लगणा है। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नूं तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले। लकड़ां नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ां चुकियां भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल बोलिया, ओ सिखा आ लकड़ां सुट दे।

ये नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन भी पाछा बचन कह रहे खूह में खलोतिया कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां पहला लकड़ा नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ा चुकी खलोता किते लकड़ा गिलियां ही ना हो जाए आज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदो भाई मध जी ने कहा ते गुरु अर्जन दे पातशाह दा फिर मन भरिया कहन लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्ना दे हिरदे विच भावना है जिन्ना दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे इन परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तो पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडीए पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

फिर भाई मंझ नूं मंजी बख्शिश कीती। भाई मंझ जिन्हां ने सतगुरु नूं सेवा करके प्यार करके अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया, आओ भाई आपां भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंझ वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लेंगे, गुरु तो वारी हो जाइए। ताई का गुरु बख्शिश करेगा किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, उह सिख नूं गल नाल ला लवेगा। आओ भाई मंझ दे गीत गा रहे हां, डिग पया पर पंड ना सुटी, खड़ा अडोल ओ सिर ते रखी, सतगुर आए बचाओ। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ ली, बख्शिश कर दिती। जे भाई मंझ ते बख्शिश हो गई, आओ भाई ते साडे ते भी बख्शिश हो जावे कि ते आपां भी भाई मंझ वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए ते फिर साडा लोक

सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस्य

तीर्थ नावां जे तिस भावां बिन भाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखां बिन कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई।

सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत वल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोहे न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुग तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास, सुनिए सतसंतोख ज्ञान, सुनिए अठसठ का इसनान, सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास, सुनिए

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भाव साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक से

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन।

आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवै चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं।

त्रिकामें त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं प्रणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रवाह हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अतूत हैं अनाश हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभक्त हैं विरक्त हैं अनाश हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलिख हैं अदिख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सो नित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट शंता प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं।

सेवा लैण कोई संगत नवी आई हुंदी है, केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषता ही धरती ते जिन्ने अवतार आए

सारे ग्रंथ रब दी गल करदे ने। एक गुरु ग्रंथ साहिब है साध संगत जेड़ा रब नाल गल्लां कराउंदा है। एक बारी गज के आखो सतनाम इस बाणी नूं कोई समझे ये रब नाल गल्लां है। बाबा ईश्वर सिंह जी का वचन है कहंदे सी कविता जड़ी ना कविता कवितावां ये चटनी है चटनी थोड़ी जी चटनी खाओ स्वाद जरूर लगती पर कदी एदे नाल पेट नहीं भरदा पेट रोटी नहीं भरदा रज रोटी ना बाणी रोटी की तरह है जड़ी रज देंदी रब नाल गल्लां करांदी तीजी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी क्यों कार तो लेके 18, 10, 20 तक किते भी हाँ नू नहीं आन दिता हाँ नहीं आन दिता नाल नाल चानना है कि वेख ले मेरे चो चानन आ रहा है हाँ नहीं तो होवे गुरु नानक अपने नां दे नाल नानक गरीब नानक सद नानक विचारा नानक नीक नानक दास नानक दवाना नानक बताला कहते हाँ नहीं आना सानू पता भाई गुरदास जी बाणी लिखते सी ते छेवें पातशाह नू वखाणी एक दिन वार लिखी सी ते खीरली पंक्ति सी जे गुरसांग वरतदा सिख सिदक ना हारे नानी की जी हों सी गुरु नूं ध्यान लवे सिख डट जे गुरु परचा पावे ध्यान लवे तो डट जे आ कई तुहाडे चों कहिंदे कोई नहीं जी जो ने करदा चंगा यह बड़ी वड्डी वरता है कि इत्थे ते बख्शिश मंगनी इन्नी पंक्ति सी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे कोई दसो छेवें पातशाह ने किड्डा वड्डा परचा पा पैसे भेजे घोड़े खरीदन काबल ठीकरियां दृष्टि बनाती ठीकरियां बन गई तंबू पाड़ के चले गए काशी उथे कथा करन लग पे भाई गुरदास जी ते छेवें पातशाह दो चार महीने बाद सुनिया भेज दे साडा चोर आया ते मुश्कां बन के भेज दे तन भाई गुरदास जी कहण लगे मैनू जल्दी ले जा केवल इशारा लैणा हौण वेख लो जगह जदों आए ते गुरु साहिब ने छेवें पातशाह ने रुका अगे करता रुका ऐ तुसी लिखी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना आरे वरताया सांग भजे क्यों तंबू पड़ के डटना सी अजे बाबा नंद सिंह दी संगत बाबा जी का वचन जे कहंदे सतगुरु साडा इम्तिहान ना लई परचा ना पाई इम्तिहान ते परचा ओदा लै जिन्हू कुछ पढ़ाई आंदी होवे असी ते अगे ही फेल आ किमां पुरश फेल का की इम्तिहान सतगुरु ने रुका अगे करता तुसी लिखी है जे गुरु सांग वरता सिख सिदक ना फिर सांग वरताया पै ठीकरियां बन गई क्यों गए संगत केवल इशारा लेना भाई गुरदास जी ने दूजी वार उचारी जी खीरली पंक्ति सी जे गुर परमाए सांग सिख क्या करे विचारा भी जे गुरु ध्यान लवे ते सिख विचारा कुछ नहीं कर सकता गज गया तो सतनाम गुरु कवे मैं तेने पेपर पाना फेल करके खाना कर लू कुछ नहीं संगत इना इशारा लवे
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਗੁਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ ਅੱਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਰੋਣੇ ਕਲਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6:30 ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ। ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ।

पंजवी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल तुसी साथ संगत जी गल्लां भी कर सकते हो, कई रान हो जाएंगे।

रंग न लाए संता से भी रंग न लाए साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए दुर्लभ देह कोई अज्ञानी उज्जड़ अपनी।

निकी निकी बच्चिया पटलौल पा के छड़ देता गया। मनुखता जल्दी रोई पर किसी ने दया नहीं की। पत्थर दे पुजारी सन, पत्थर हो चुके सन, पत्थर दे अखा विच कदी आंसू नहीं आंदा सावर, पावे सारा जगत का ही खून बह जाए। पुजारन करो तेरी वाले, सारी प्रकृति रो रही होगी, कुदरत रो रही होगी। जदों बेगुनाह नूं मारिया जा रहा सी, पर ए पत्थर पत्थर दिल इंसान, इन्हां दीआं अखां विच आंसू नहीं आए। उजारन करो तेरी वाले, एक नहीं सिमरन भजन, दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। आ दुनिया ते राज करन वाले, जे तेरी हाथ में कलम है तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। जे तू रहम दी कलम वाहेगा तेरे ते भी वो रहम दी कलम वाहेगा, ते जे तू जुलम दी कलम वाहेगा तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। इसलिए जा सिकदार है पवे जंजीरी, चाकर दत्तों मरना।

अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, ते केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल हो वै अत पारी, हर को नाम खिन माए उतारी। अनक पुने चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल शिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आकावे। जय मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आये, नानक गुरुमुख प्रमगत पाईये। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जे आए संकार, हर का नाम तत्काल उतार। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईये साध के संग। जय मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जय पैड़े महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाप्यान तपत बो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां तिरखा मन तुझे आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जनकोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकत साध कमात। हर जन के हर नाम नितान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रित वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

मूर्ख लोग अजान, कहो नान बिन हर भजन बिरथा जन्म सिराम। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगो होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इने सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ए 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तो निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाई दा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्नी चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे, जे सुख चाहुंदा है ना ते सुबह शाम संगत विच बैठ के सवाल सफले करया।

तेरी बाणी ए बाणी ता ऐसी है मैं जिक्र करांगा बाणी बारे कि बाणी की है।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती। इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नूं। ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगमी बाणी नूं मेरे मन दी कालख लै जावे।

ठगा नू सज्जन कर दी कोई समझे रमज इलाही नू ते आ जड़ी गल कहन लगा ए बाणी ऐसी कुंजी है जो दिल दे जंदरे खोल दिए प्रीतम दा दर्श करन दिए मुहों भी सब कुछ बोल दिए कदे उला के कोई वेखे बाणी बोल दिए जिन्हां ने बाणी नू बुला के वेखे कोई बोले तां सही पर सात संगत एक गल याद रखना जे किसे नाल गल करनी होवे ना गल करन तू पहला ओदी बोली नू समझना जरूरी है ओदी पढ़ाई पढ़नी जरूरी है क्योंकि नहीं तो बोली समझना आएगी बाणी नू कोई बुला के वेखे तुसी कदे अरदास करो अरदास तो बाद कोई हुक्मनामा लो जो तुहाडे मन विच होएगा ऐसा ही हुक्मनामा आ जाएगा बाणी बोलती ए बाणी ऐसी कुंजी है जो दिल दे जंदरे खोल दिए प्रीतम दा दर्श करांदी है मुहों भी सब कुछ बोल दिए ए ओ पवित्र बाणी आओ सारे रसना पवित्र करो।

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातेया आप तरिया, जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल कीता बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने, बड़ी बार कीर्तन कीता है, पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पाठ करदियां ने, ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान, कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की दे समझिया होवे, ऐ साडे साडी अख च कोई

ना होवे, आकाश विच कोई ऐसी धरती ना होवे जिथू बाणी आई होवे, कहंदे ने दिल दियां गहराइयां विच पहुंच जाओ। बाणी दा जिक्र करन लगा, उस खीर समुंदर चों, गंभीर समुंदर चों, समुंदर तों वी थले चले जाओ, शायद कोई ऐसी थां होवे। उस खीर समुंदर चों, गंभीर समुंदर चों, कवला चू ब्रह्मा सन कई रंग विखाले ने, शायद कोई कवल जिथों ब्रह्मे ने जन्म लिया, शायद कोई उस थां ते ऐसा केंद्र होवे जिथों बाणी आई। कवला चू ब्रह्मा सन कई रंग विखाले ने, वाह चोज निराले ने। ते साथ संगत ऐसरा ध्यान दियो, इहदियां रमज़ां कुछ गुझियां ने। नखरीलियां रुमकां ने, नशरीलियां ठुमकां ने, कुछ गुझियां लाइयां ने, रमज़ां समझाइयां ने। ते स्याही की है जिस स्याही नाल बाणी लिखी गई, ए कजली राणी है कोई मस्त दीवानी है। ते अखर की ने सोने जी जुल्फां विच इस मोती गुंदे ने, ज्यों लटकन बुंदे बुंदे ने। ते आ बड़ी कमाल दी गल है, हाथ प्रेम सुराही है मस्ती च पिलाई है। तुसी भी तो प्रेम दी सुराही पी के ही बैठे हो ना, हाथ प्रेम सुराही ये मस्ती च पिलाई ये, अंगद दे अंग लगा अमरु तू अमर बना, गुरदेव बनांदी ये नानक अखवांदी ये। आई कित्थों कैलाशों लथी ये, आख्या नहीं आकाशों लथी ये, ए पवित्र बाणी आख्या नहीं। फिर आए कित्थों है, कहंदे ने ए नूर इलाही है, ए जोत इलाही है, देगां विच कड़ कड़ के तवियां ते सड़ सड़ के। ए नूर इलाही है, ए जोत इलाही है, देगां विच कड़ कड़ के तवियां ते सड़ सड़ के, करनी दे मालक ने ए आख सुनाई है तां भीड़ बनाई। ए ओ पवित्र बाणी, नमस्कार करदे हां पवित्र बाणी नूं। गुरु कृपा करे सुन सुन जीवां तेरी बाणी। अते जिस परिवार वल्लों अज लंगर है सतगुरु पातशाह, उस परिवार ते सिर ते बरकत पर्याहत रखे, जिन्हां ने सारियां संगतां दियां खुशियां लईयां। अते गुरु बख्शिश करे बच्चियां दे जन्मदिन मनाए हुए मुबारक होण। ते तुसी सारे असीस देओ, आखरी पंक्ति विच दोई कर जोड़, मांगो इक दाना साहिब तुठे पावां, सास सास नानक अराधे आठ पैर गुण गावां।

पर हमेशा जित तरमिया दी होई है अतरमिया दा हमेशा ही बुरा अंत होए है। ए शब्द भगत कबीर साहब जी दा उचारिया होया जिद विच भगत जी बयान करदे ने कि प्रहलाद भगत ने परमेश्वर दा सिमरन कीता ता परमेश्वर ने किस तरह उस दी रक्षा कीती।

इंद्रदेव से ने हरनाक्ष जी का अरवा लिखा तो नारद मुनि दे हवाले कर देता है। क्या दोनों नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए। आश्रम भी ओ जिते हर वक्त परमेश्वर का नाम जपया जांदा है, ओदा नाम लिया जांदा है। क्या दू इत्थे आके अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ए जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

बड़ा उग्र कठिन तप कीता। दूसरे पासे नारद मुनि दे आश्रम क्या तो ने एक बच्चे नु जन्म देता, जिस बच्चे दा नाम प्रहलाद रखिया गया, जिस नु आपां सारे प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाकश की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट

देवते ते चढ़ाई करन दी के पहला इंद्र को बदला लवां ते बाकियां दे नाल फेर लड़ांगा के लड़ाई दी तैयारी कर रहे हैं।

चढ़ाई की थी, वर्मलेशन देवते एदा मुकाबला ना कर सके, देवत्या दा बहुत

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष दे मरण दे

पढ़ाई तो पहला जेड़ा जरूरी सबक है वो तुसा सारे ने लिखना है ते बोलना है। सारे बच्चों नु कहा अपनिया पटियां ते लिखो ते बोलो जले हर नाकश फले हर नाकश। हर नाकश ही रब है, हर नाकश ही भगवान है। ता उस वक्त जो प्रहलाद ने कहा कबीर साहब ने

पिता छोटी उम्र है। पिता वाल देखिया जिदे चेहरे ते बड़ा गुस्सा है, देखिया प्रहलाद मेरा नाम जप।

हाथ पैर बन के ऊंची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी। छोटे जे बच्चे प्रहलाद नु चुक के

कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हू कौन मार सकता है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग्ग च साड़ के मार देंगा।

करके सारे लोग खुशी नाल झूम उठे कि सचमुच परमेश्वर धर्मियां दी रखिया करदा है। हर नाकश नूं बड़ा गुस्सा चढ़े, होलकां सड़ गई, प्रहलाद बच गया।

तेरी रखिया करने वाला मेरा की उगाड़ लैंदा ते तेनू किवें बचांदा। एक थम तत्ता कीता गया हरनाकश ने कहा जे तेनू अपने रब ते भरोसा है इस तत्ते थम नू जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पिया। ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली दस मैनू

कहते हैं ना आकाश से ना तू पानी विच है ना सुखे ते ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले क्या देख ले ना मैं औरत हां ना आदमी सारे वर पूरे अद्धा शरीर आदमी दा है अद्धा शरीर शेर दा जदू हरनागश ने कहा हां भगवान जिन्ने वार मैं मंगे सन सारे पूरे ने परमेश्वर बड़ा ब्यंत है गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे ओ चेला हो भी नहीं सकदा ते ऐसियां दा नाश

भगत कबीर सब नाल भी होया है। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी, उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नु अपने

सिकंदर लोदी दे सामने हुए सिकंदर लोदी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई ने, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ऐग जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देव दानव छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश वेतंजम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदानं चक चक व्योम विवानं आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभव।

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताकि गहो आतम बस करके भी

आनंद आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभो चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

देवदानं चक चक व्योम विवानंद आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

देवदानं छक छक व्योम विवानं आत्मोपदेशभे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब भू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

करहे देव दानं छक छक व्योम विवानं आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आनंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

देवदानं छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ऐद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश दे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

चक चक रहे देव दानंग, छक छक व्योम विवानंग, आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

देवदानं छक छक व्योम विवानं आत्मोपदेशे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देवदानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

हे देवदानव छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ऐग जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभो चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

जीवानंद आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

प्रसन्न आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

देवदानं छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्मोपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन तब हो व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला जा।

जीवानंद। आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वेस्तंजम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

चक चक रहे देव दानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस कर।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

समुपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

अंग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश बेतंजम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभव।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

समुपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताकि गहो आत्म बस करके

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

कर हे देव दानंद, छक छक व्योम विवानंद, आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभूत चढ़ाओ, ताकि गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगे साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब भू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

हुन जवानी आ गई। मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता कराउंदा है तां कहिंदा है जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे।